आरती ठाकुर ने गाई संत तुलसीदास की भक्ति रचना, अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब समूह स्वर में सुनते हैं संत तुकाराम की ये भक्ति रचना, जिसके संगीतकार हैं तादाद सांदेकर।

संत तुकाराम की यह भक्ति रचना समूह स्वर में अभी आपने सुनी, जिसके संगीतकार थे दादा चांदेकर। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं संत भानुदास की ये रचना, जिसे गाया है मनोहर सबनीस और सहकारियों ने।

मनोहर सबनीस और सहकारियों ने गाई संत भानुदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग अहिर भैरव पर ख्याल. कलाकार हैं देवोश्री भट्टाचार्य. आपके साथ तबले पर हैं हिंदोल मजुमदार.

0: प्रस्तुत है राग अहिर भैरव पर ख्याल, कलाकार हैं देवश्री भट्टाचार्य।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल। लिसन टू ख्याल इन द राग अहिर भैरव। Our artist is Deboshree Bhattacharya. Accompanying our artist on the tabla is Hindol Mojumdar. Listen now to Khayal in the Rag Ahir Bhairav. Our artist Deboshree Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहिर भैरव पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थी देवश्री भट्टाचार्य। आपके साथ तबले पर थे हिंदोल मजुमदार। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग चारू केशी पर संतूर वादन। कलाकार हैं सुबीर मुखोपाध्याय। आपके साथ तबले पर हैं देवाशीष चौधरी। तो लीजिए प्रस्तुत है राग चारू केशी पर संतूर वादन। कलाकार हैं सुबीर मुखोपाध्याय।
1: यू वर लिसनिंग टू ख्याल इन द राग अहिर भैरव। आवर आर्टिस्ट वॉज देवश्री भट्टाचार्य। Accompanying our artist on the tabla was Hindol Mojumdar. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Listen to a Santoor recital in the rag Charu Keshi. Our artist is Shubir Mukhopadhyay. Accompanying our artist on the tabla is Debashish Chaudhuri. Listen now to the Santoor in the rag Charu Keshi. Our artist Shubir Mukhopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग चारू केशी पर संतूर वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सुबीर मुखोपाध्याय। आपके साथ तबले पर थे देवाशी चौधरी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ संतूर रिसाइटल इन द राग चारू केशी। आवर आर्टिस्ट वॉज सुबीर मुखोपाध्याय। Accompanying our artist on the tabla was Debashish Chaudhuri. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन। कलाकार है पुष्कर लेले। आपने प्रस्तुत किया राग बिलास खनी तोड़ी सुनते हैं। विलंबित तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है नी के घूंगरिया और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है नी के शोभा। साथ संगत हारमोनियम राजीव तांबे, तबला विकास पुरंदरे। तो आइए सुनते हैं राग बिलास खनी तोड़ी, कलाकार पुष्कर लेले।

अभी आप सुन रहे थे राग बिलास खनितोड़ी, कलाकार थे पुष्कर लेले। आपके साथ हारमोनियम पर थे राजू तांबे, तबले पर थे विकास पुरंदरे। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं पुष्कर लेले द्वारा प्रस्तुत राग नट भैरव। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है मान अब मोरे बालम, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है सुजान करिए। साथ संगत हारमोनियम सुरेश फड़तरे और तबला माधव मोड़क। तो आइए सुनते हैं राग नट भैरव, कलाकार पुष्कर लेले।

अभी आपने सुना राग नटभैरव, कलाकार थे पुष्कर लेले। आपके साथ हारमोनियम पर थे सुरेश फड़तरे और तबले पर थे माधव मोड़क। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का उपशास्त्रीय गायन. पहले प्रस्तुत है राग तिलंग में ठुमरी. बोल हैं सांवरे सलोने मोरे श्याम. तबले पर आपकी संगति की है हशमत अली खाने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. In the program of Light Music, we now present a vocal rendition by Ustad Lakshman Das Sindhu. First, listen to Thumri in Rag Tilang. The words are Sanvre Salone More Sham. He is accompanied by Hashmat Ali Khan on tabla.

0: अभी आप सुन रहे थे राग तिलंग में ठुमरी और अब पेश है मुल्तानी काफी, बोल हैं वा वे सजन।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग तिलंग एंड नाउ लिसन टू मुल्तानी काफी। द वर्ड्स आर वा वे सजन।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मुल्तानी काफी अभी आप सुन रहे थे, और अब सुनिए मिश्र काफी ठुमरी। बोल हैं नाही पड़े मोसे चै, तबले पर आपकी संगति की है हशमत अली खाने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग मुल्तानी काफी। नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र काफी। द वर्ड्स आर नाही पड़े मोसे चैन, अकंपनीड बाय हशमत अली खान ऑन तबला।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र काफी में ठुमरी, और अब सुनिए सूफियाना कलाम। रचना बाबा बुल्ले शाह की है, बोल हैं की जाना मैं कौन।
1: यू आर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र काफी एंड नाउ लिसन टू सूफियाना कलाम। इट्स कंपोज्ड बाय बाबा बुल्ले शाह। द वर्ड्स आर की जाना मैं कौन।

0: अभी आप सुन रहे थे ये सूफियाना कलाम, और लीजिए अब प्रस्तुत है उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र पीलू में ठुमरी। बोल हैं सैया बोलो मोसे तनक।
1: यू वर लिसनिंग टू सूफियाना कलाम। नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र पीलू बाय उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु। द वर्ड्स आर सैया बोलो मोसे तनक।

0: अभी आप उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र पीलू में ठुमरी सुन रहे थे, और अब सुनिए दादरा बोल हैं मैंने लाखों के बोल सहे।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र पीलू एंड नाउ लिसन टू दादरा। द वर्ड्स आर मैंने लाखों के बोल सहे।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया ये दादरा भी आप सुन रहे थे। और अब सुनिए राग मिश्र तिलंग में ठुमरी। बोल हैं अब के सावन घर आजा।
1: यू वर लिसनिंग टू दादरा एंड नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र तिलंग। द वर्ड्स आर अब के सावन घर आजा।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु कगाया राग मिश्र तिलंग में ठुमरी अभी आप सुन रहे थे, और अब सुनिए दादरा बोल है दिल की ये नजर का निशाना हुआ।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र तिलंग बाय उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु। नाउ लिसन टू दादरा, द वर्ड्स आर दिल की ये नजर का निशाना हुआ।

0: अभी आप उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का उप शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी हशमत अली खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: इन द प्रोग्राम ऑफ लाइट म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित लक्ष्मण दास सिंधु। ही वाज अकंपनीड बाय हशमत अली खान ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

தரிக்கிட்டு தகுதா.

Then the decket dina tuna na ket ta dina then ket dina.

धाड़ा घन धाग तटक धात टका तक तक घन ना घन देंग नाड़ा घन धाग तटक धात टका तक धा घन देंग नाड़ा घन तेन ताड़ा घन ताग तटक धात टका तक तक घन नाड़ा घन देंग नाड़ा घन धाग तटक धात टके धा घन देंग नाड़ा घन।

तगड़ांग तगड़ांग घड़न कितने घड़ांग तगड़ांग धागड़न कितने तैती ता धागड़न कितने तगड़ांग धागड़न कितने धागड़न कितने धागड़न कितने तगड़ांग तगड़ांग घड़न कितने तगड़ांग धागड़न कितने तैती ता धागड़न कितने तगड़ांग धागड़न कितने धागड़न कितने धागड़न कितने

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में. आपका स्वागत. सुनते हैं सारंगी वादन. कलाकार है पंडित राम नारायण. प्रारंभ में आपने सारंगी पर प्रस्तुत किया राग मारुबीहाग. सुनते हैं विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है.

श्रोताओ, अभी आपने सुना सारंगी पर राग मारू बिहा। कलाकार थे पंडित राम नारायण। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं सारंगी पर राग गुजरी तोड़ी, कलाकार पंडित राम नारायण। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है सुरेश तळवलकर।

श्रोताओ, अभी आपने सुना सारंगी पर राग गुजरी तोड़ी। कलाकार थे पंडित राम नारायण। आपके साथ तबले पर थे सुरेश तळवलकर। आज के सारंगी वादन के कार्यक्रम में प्रारंभ में आप सुन रहे थे राग मारुभिया और अंत में आपने सुना राग गुजरी तोड़ी। कलाकार थे पंडित राम नारायण। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग माल कौस पर शहनाई वादन. कलाकार हैं गौहर अली खान एंड पार्टी. आपके साथ तबले पर हैं तरुण रॉय.
2: This evening we present Hindustani instrumental recital. Listen first to a Shehnai recital in the Raag Mal Kaus. Our artist this evening is Gohar Ali Khan and Party. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मालकोस पर शहनाई वादन सुन रहे थे। कलाकार थे गौहर अली खान एंड पार्टी। आपके साथ तबले पर थे तरुण रॉय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग हंस ध्वनी पर शहनाई वादन। कलाकार हैं गौहर अली खान एंड पार्टी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग हंस ध्वनी पर शहनाई वादन। कलाकार हैं गौहर अली खान एंड पार्टी।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग हंस ध्वनि पर शहनाई वादन सुन रहे थे। कलाकार थे गौहर अली खान एंड पार्टी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ शहनाई रिसाइटल इन द राग हंस ध्वनि। आवर आर्टिस्ट वॉज गौहर अली खान एंड पार्टी। Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खां. राग है नट भैरव जिसमें आप सुनेंगे विलंबित और द्रुतगत दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध हैं. संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दू खां. दिस इज रागम 24/7 an exclusive Indian classical music channel. Now listen to a Hindustani sarod recital by Ustad Amzad Ali Khan. The rendition commences with the rag Nat Bhairav. The accompaniment has been provided by Ismail Daddu Khan on the tabla.

अब आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खां से राग हेमवती। आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप और एक गत जो रूपक ताल में निबद्ध है। तबला संगत की है इस्माइल दद्दू खां ने। नाउ लिसन टू राग हेमवती बाय उस्ताद अमजद अली खां।

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खान। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खान से पीलू धुन, जो अद्दा ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान, यू विल लिसन पीलू धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थे उस्ताद अमजद अली खां। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खां। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर अनवरत भारतीय शास्त्रीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव का बांसुरी वादन. सर्वप्रथम आप सुनेंगे इन्हीं की बजाय बांसुरी पर राग गुर्जरी तोड़ी में धुन. मध्य लय रूपक तथा द्रुत लय तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित रविनाथ मिश्र.

अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव द्वारा बांसुरी पर बजाई राग गुर्जरी तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित रविनाथ मिश्र। आइए सुनते हैं इन्हीं का बांसुरी पर बजाया राग मेघ।

ये आप सुन रहे थे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव द्वारा बांसुरी पर बजाया राग मेघ। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित रविनाथ मिश्र। पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव अपने कार्यक्रम का समापन बांसुरी पर बजाई बनारसी कजरी से कर रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव द्वारा बांसुरी पर बजाई बनारसी कजरी। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित रविनाथ मिश्र। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सहयोग से। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर अनवरत भारतीय शास्त्रीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है सतीश प्रकाश कमर का शहनाई पर बजाया राग भैरव. विलंबित गत तीन ताल में और मध्य लयगत झप ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद फैयाज खान ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ शहनाई रिसाइटल बाय सतीश प्रकाश कमर इन राग भैरव. The Vilambit Gat is said to Teen Taal and Madhyale Gat is said to Jhap Taal. He is accompanied by Ustad Fayyaz Khan on tabla.

0: अभी आप सतीश प्रकाश कंवर का शहनाई पर बजाया राग भैरव सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग मधमाद सारंग। मध्यलय और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद फैयाज खान ने।
1: You were listening to a Shehnai recital in Raag Bhairav by Satish Prakash Kamar. Now listen to Raag Madhmat Sarang. The Madhyalayagat and Drutgat is set to Teen Taal.

0: अभी आप सतीश प्रकाश कमर का शहनाई पर बजाया राग मधमात सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद फैयाज खाने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ शहनाई रिसाइटल इन राग मधमात सारंग। ही वाज अकंपनीड बाय उस्ताद फैयाज खान ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

ಎರಿ ಮಯರಿ ಗರಿ ಗೈರ ಬರಿ ಗರ.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए विदुषी मंजरी अलेगावकर के स्वर में संत भागाबाई की रचना। संगीत बद किया है रविंद्र खासनीस ने।

रहे थे संत भागाबाई की रचना विदुषी मंजरी आलेगावकर के स्वर में, संगीतबद्ध किया था रविंद्र खासनीस ने। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है बबनराव नावड़ीकर के स्वर में, रचनाकार है संत नामदेव महाराज।

हूँ। अभी आप सुन रहे थे संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना बबन राम नावड़ीकर के स्वर में, भक्ति संगीत कार्यक्रम की अगली रचना समूह स्वर में।

रहे थे समूह स्वर में अर्चना, श्रद्धा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए नारायण स्वामी की भक्ति रचना, जिसे गाया है सुधा मल्होत्रा ने, संगीत दिया है मधुकर गोळवलकर ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुधा मल्होत्रा के स्वर में नारायण स्वामी की भक्ति रचना। संगीतकार थे मधुकर गोळवलकर। अगली रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है चंद्रकांत

थे चंद्रकांत काले के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है माधुरी ओक के स्वर में।

रचना आप सुन रहे थे माधुरी ओक के स्वर में। श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। अब सुनिए एन के बेहरे की रचना समूह स्वर में। माता।